0: People Powered Radio 2XX FM 98.3, a volunteer, not-for-profit community station accessible to all. If independence and diversity are important to you, become part of the 2XX FM community by subscribing, donating, sponsoring or volunteering. Go to 2XXFM.org.au.
1: जयंती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जेंडर इक्विटी मैटर सुन रहे थे पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। शाम के 7 बज रहे हैं रेडियो हार्मनी पर। मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता।
2: दिस इज हार्मनी।

रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मित्रों, आज 20 मई है। आज का हम कार्यक्रम अपना शिव की स्तुति से आरंभ करेंगे।

0: शिवत्व हर एक परमाण में। कभी पूछा अगन सारा सागर जल सोख के,
1: गरल कुंभ विश्व स्वयं

0: केदारा, ये कैलाश एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कैलाश रिकॉर्ड्स की एक भेंट थी जिसे बनाया था पद्मश्री कैलाश खेर ने। सबसे बड़ी बात इस भजन की ये थी दैट इट वाज फीचरिंग लेजेंड्स सच एज पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन, पद्मश्री सुरेश वाडकर, पद्मश्री अनूप जलोटा, पद्मश्री हेमा मालिनी, पद्मश्री सोनू निगम, पद्मश्री कैलाश खेर, पद्मश्री आनंदम शिवामणि, पद्मश्री शंकर महादेवन, पद्मश्री प्रसून जोशी, श्रेया घोषाल, शान, बाबुल सुप्रियो एंड अरिजीत सिंह। ये सब एक ही गाने में इन इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिकल कोलैबोरेशंस। आशा है ये भजन आपको भी बहुत पसंद आया होगा।
1: 21 मई का है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 22 को पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 24 की गुजरात डे, 26 को नेशनल मेमोरियल डे, 27 का ईद उल अधा और 31 को एंटी टोबैको डे। आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है, पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। दोस्तों, क्या आप कुछ अलग सुनना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष मुद्दे पर विशेष कवरेज करें? तो आप कृपया हमें लिख भेजें harmonyfm2xx@gmail.com पर।
0: दोस्तों, लगभग 70 मिलियन वर्ष पुरानी हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। क्या पृथ्वी के इतिहास में आपका अस्तित्व महत्वहीन लगता है? खैर, अनुमान लगाइए। अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण अफ्रीका में बार्बरटन ग्रीनस्टोन बेल्ट 3.2 से लेकर 3.6 अरब वर्ष पुरानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 29 मई 1953 को हिलरी और टेंसिंग एवरेस्ट पर्वत की शिखर पर पहुंचे थे। आज उस बात की 70वीं वर्षगांठ है। रेडियो हार्मनी आज हिमालय पर्वत पर यह विशेष प्रस्तुति आपके लिए लाया है। आज के कार्यक्रम में हिमालय से जुड़े कई तथ्य हम लाए हैं जो आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और इस विशेष प्रस्तुति का आनंद उठाइए। दोस्तों, हिमालय से कई मिथक और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। हिमालय क्या है, इसके भौगोलिक पहलू क्या है, वहां कौन रहता है, और इस तरह की कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। आइए हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्यों पर नजर डालना शुरू करते हैं। हिमालय एशिया में पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है जो लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। पहाड़ प्रतिवर्ष 6.1 सेंटीमीटर की दर से ऊंचे हो रहे हैं। हिमालय में पाए जाने वाले पहाड़ पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। ये दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 का घर है, जिनमें माउंट एवरेस्ट जो 8,849 मीटर ऊंचाई है, K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर, ये सब शामिल हैं। प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी खड़ी चोटियां और कई ग्लेशियर हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि हिमालय नाम का अर्थ ही बर्फ का घर है। ये नाम बहुत उपयुक्त है क्योंकि कई पर्वत चोटियां वास्तव में स्थायी बर्फ रेखा से ऊपर उठती हैं, जिसका अर्थ है कि बर्फ कभी नहीं पिघलती, यहां तक कि गर्मियों में भी नहीं। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए हिमालय 4 मुख्य पर्वत बेल्टों से बना है, जिन्हें टेथिस, महान हिमालय श्रृंखला, निचला हिमालय और उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय जो हैं ये एशिया में हैं। वे भारत, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में भूमि के क्षेत्रों को कवर करते हैं। हिमालय का निर्माण 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। बहुत समय पहले जैसा लगता है ना? खैर, वास्तव में हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय का निर्माण तब हुआ जब दो टेक्टोनिक प्लेटें, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, एक दूसरे से टकराईं। समुद्र तल की चट्टान ऊपर की ओर धकेल दी गई, जिससे पहाड़ों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। मजेदार तथ्य यह है कि हिमालय में पहाड़ वास्तव में अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट अब तक यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। परिणाम स्वरूप पहाड़ प्रतिवर्ष 6.1 सेंटीमीटर की दर से ऊंचे हो रहे हैं। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु बनाता है। इसकी चोटी समुद्र तल से 8,849 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका मतलब यह है कि माउंट एवरेस्ट का शिखर स्थायी बर्फ रेखा से ऊपर है। तापमान कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ता और सर्दियों में औसत तापमान -36 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहां हवा का दबाव बहुत कम है, अर्थात हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है। हवाएं 285 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। इन दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद हर साल 800 से अधिक पर्वतारोही शिखर तक पहुंचने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मजेदार तथ्य ये भी है कि माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी मां।

गीत था जिसे लिखा था और कंपोज किया था इसका संगीत विनीत आर राय ने, इसका संगीत विधन राय और विनीत राय ने मिलकर दिया। गिटार पर थे आकाश नायक, ड्रम्स पे थे गौरव दास गुप्ता और बेस दिया था रोहित शंकर ने। मित्रों हम बात कर रहे हैं हिमालयों की और अब बात करते हैं उनमें से दूसरी ऊंची शिखर K2। K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो समुद्र तल से 8611 मीटर ऊपर है। इस पर्वत की खोज 1856 में की गई थी और इसे K2 नाम दिया गया क्योंकि यह काराकोरम रेंज में मापी जाने वाली दूसरी चोटी थी। K2 चढ़ाई के लिए सबसे घातक पहाड़ों में से एक है और इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास करने वाले कई पर्वतारोहियों की मृत्यु भी हो चुकी है। 1954 में इटालियन पर्वतारोही लीनो लेसेडेली और अकिल कैम्पेग्नोनी शीर्ष पर सफल चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय में है और ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसका शिखर समुद्र तल से 8586 मीटर ऊपर है। इसे चढ़ना एक खतरनाक और कठिन पर्वत माना जाता है। हालांकि 1998 में ब्रिटिश पर्वतारोही जेनेट हैरिसन शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। कुछ नोटवर्दी बातें ये हैं। हिमालय में 8000 मीटर से अधिक ऊंची 10 चोटियां हैं। ये है हिमालय पर्वतमाला में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 10 चोटियां, अर्थात माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, लोत्से 8516 मीटर, मकालू 8485, चो ओयू 8281, धौलागिरी 8167, मनासलू 8163, नंगा पर्वत 8126, अन्नपूर्णा 8100 और शीष शंपंगमा 8064 मीटर की ऊंचाई। इसके अलावा समुद्र तल से 7000 मीटर से अधिक ऊंचे 40 पर्वत हैं। इसलिए हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। पृथ्वी पर सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के रूप में हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच अभिसरण सीमा द्वारा हुआ था। लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी और लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट तक पहुंची थी। फिर ये दो प्लेटें टूट गईं और मुड़ गईं, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं बन गईं जिन्हें हम आज देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर समुद्री चूना पत्थर की मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति प्राचीन टेथिस महासागर से हुई। हिमालय भारतीय मैदान और तिब्बती पठार की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है। हिमालय पर्वत माला की वजह से मॉनसून की बारिश को भारतीय मैदानी इलाकों में रखा जा सकता है, जिससे उपजाऊ भूमि और विविध परिस्थिति का तंत्र विकसित होते हैं। इसके विपरीत पहाड़ मॉनसून को तिब्बत में गहराई तक प्रवेश करने से रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित वर्षा होती है और पठार पर शुष्क जलवायु होती है। यह स्पष्ट अंतर वर्षा छाया प्रभाव पैदा करता है, जिसमें दक्षिणी ढलानों पर प्रचुर वर्षा होती है जबकि उत्तरी ढलान और तिब्बती पठार शुष्क रहते हैं। हिमालय एशिया की 19 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है,
जिनमें सिंधु नदी, गंगा नदी और यारलुंग सानपो नदी शामिल हैं। इन राजसी पहाड़ों के ऊपर विशाल ग्लेशियर और बर्फ के मैदान प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जो इन महत्वपूर्ण जल मार्गों को पोषण देते हैं और नीचे की ओर लाखों लोगों को की आजीविका को बनाए रखते हैं। क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में ये नदियां कृषि को समर्थन देने, जल संसाधन प्रदान करने और अपने पाठ्यक्रम के साथ सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विविधता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: ऊंचे हिमालय के नीचे, ये था फिल्म हिमालय की गोद में से एक गीत जो कि 1965 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था लता मंगेशकर ने, इसका संगीत दिया था आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी ने, और इसके लिरिक्स थे आनंद बख्शी के। मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। हम बात कर रहे हैं आज हिमालय की, क्योंकि आज इस हिमालय शिखर पर जीत हासिल करने वाले ये 70वीं उसकी सालगिरह है। हिमालय की संपूर्ण श्रृंखला में 50 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। हिमालय की जनसंख्या में आर्य, मंगोलॉयड और नीग्रोइड शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 600 मिलियन लोग हिमालय से निकलने वाली सिंधु गंगा और त्सांगपो ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में रहते हैं। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न संस्कृतियों से प्रभावित हैं और उनकी अपनी अपनी आस्था और मान्यताएं हैं। माउंट एवरेस्ट के उत्तर की ओर तिब्बती लोग तिब्बती बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। मध्य हिमालय की घाटियों की संस्कृति अफगानियों और ईरानियों के समान है। नेपाल में संस्कृति तिब्बती और हिंदू दोनों परंपराओं से प्रभावित है। यद्यपि यह मनुष्यों के लिए एक भयानक रहने का वातावरण है, हिमालय पर्वत कुछ दुर्लभ जानवरों का घर है, जैसे हिम तेंदुआ, हिमालय जंगली याक, कस्तूरी मृग, हिमालय तहर और कुछ अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां। कुल मिलाकर हिमालय में 300 से अधिक स्तनपायी प्रजातियां और हजारों पक्षी, मछलियां, सरीसृप और अभ्यचर सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हैं। हिमालय पर्वत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उपोष्ण कटिबंधीय और अल्पाइन क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के कारण जानवरों में भिन्नता होती है। पर्यटकों को माउंट एवरेस्ट के निचले इलाकों में याक और हिमालयन मार्मोट्स को देखने का मौका मिल सकता है। हिमालयी तहर माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी किनारे पर समुद्र तल से 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों और जंगली पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, जबकि हिमालयी नीली भेड़ें 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानी पहाड़ियों में रहती हैं। हिमालय में भी दो प्रकार के भालू रहते हैं, हिमालयी भूरा भालू और हिमालयी काला भालू। हिमालय पर्वत में सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक हिम तेंदुआ है। हाल ही में केवल 3920 और 6390 जंगली हिम तेंदुआ पाए गए हैं। पृथ्वी पर तीसरे ध्रुव के अत्यधिक ठंडे वातावरण से बचने के लिए हिमालय में रहने वाले जानवर अधिकतर मोटी त्वचा और भारी शरीर वाले होते हैं। अपनी भारी भरकम उपस्थिति के बावजूद हिमालय में ये जानवर बहुत सतर्क होते हैं। हिमालय दक्षिणी एशिया में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और चीन की सीमा पर स्थित है। सीमा के एक भाग के रूप में हिमालय दक्षिण पश्चिम में चीन, उत्तर में भूटान और उत्तर पूर्व में भारत और नेपाल तक है। परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं किसी एक राष्ट्र की नहीं है, जबकि भारत, नेपाल और भूटान अधिकांश हिमालय पर संप्रभुता का दावा करते हैं। उनमें से कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान और चीन का भी कब्जा है। वास्तव में हिमालय का मुख्य भाग चीन और नेपाल के जंक्शन पर स्थित है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को घेरे हुए है। हिमालय को इतना आकर्षक क्या बनाता है? न केवल प्रकृति के चमत्कार, अनोखी संस्कृति और रहस्यमय धर्म, बल्कि कुछ दिलचस्प लोक कथाएं भी, जैसे येति की विश्व प्रसिद्ध कहानी। किंवदंती के अनुसार येति एक विशाल प्राणी है जो नेपाल, भूटान और तिब्बत में हिमालयी क्षेत्रों में निवास करता है। ये आम लोगों की तुलना में लंबा है और घने बालों से ढका हुआ है। येति की कहानी 19वीं सदी में पश्चिमी दुनिया को पता चली और 20वीं सदी के दौरान हिमालय में अजीब जीवों को देखने की खबरें बढ़ी। अतीत में येति के पैरों के निशान और खोपड़ी पाए गए थे, लेकिन आज तक ये अनिश्चित है कि क्या येति वास्तव में हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद है। फिर भी येति की कथा एवरेस्ट की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती रहती है, जिससे हिमालय दुनिया भर के जिज्ञासु खोजकर्ताओं के लिए एक गंतव्य बन जाता है।
1: Are you a 2XX subscriber? Not only does your subscription help keep our station and shows supported and on air, you are also eligible to receive giveaways, the Communique e-newsletter, and ongoing discounts at the Canberra local businesses supporting 2XX. 2XX subscriber discounter businesses include Landspeed Records, the Beck Taylor Music School, Lonsdale Street Cyclery, and more. Check out all the details by clicking the support button at 2xxfm.org.au. Subscribe now. 2XX, People Powered Radio.

फितूर का ये गीत जिसे गाया था अमित त्रिवेदी ने और इसके लिरिक्स थे स्वानंद किरकिरे के। मित्रों, पश्मीना स्रोत के आधार पर चांगथांगी कश्मीरी बकरी से के कश्मीरी ऊन को संदर्भित करता है। बढ़िया कश्मीरी ऊन या कश्मीरी ऊन का एक ही पर्यायवाची है। फारसी में पश्म शब्द का अर्थ है ऊन, लेकिन कश्मीर में पश्म का तात्पर्य पालतू चांगथांगी बकरियों के कच्चे बिना काते हुए ऊन से है। आज आम बोलचाल की भाषा में पश्मीना या तो सामग्री या उससे बने कश्मीर शॉल के प्रकार को संदर्भित कर सकता है। कश्मीरी और पश्मीना दोनों एक ही बकरी से आते हैं, लेकिन विशिष्ट कश्मीरी का व्यास 12 से 21 माइक्रोन तक होता है, जबकि पश्मीना कश्मीरी और रेशम मिश्रण 70% और 30% का भी उल्लेख कर सकता है, जिसमें 12 से 16 माइक्रोन तक की विशिष्ट फाइबर सीमा होती है। मित्रों, 1953 के वसंत तक दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई अपरिहार्य लगने लगी थी। 1921 में अंग्रेजों द्वारा एवरेस्ट पर चढ़ने का पहला प्रयास कम से कम 10 बड़े अभियानों और 2 पागल एकल प्रयासों को विफल कर दिया था। 1950 में नए खुले नेपाल में पर्वत के लिए दक्षिणी दृष्टिकोण की खोज और अगले वर्ष खतरनाक खुम्बू हिमपात की पहली चढ़ाई के साथ 1990 के दशक तक शिखर तक पीली ईंट वाली सड़क के रूप में जाना जाने लगा पहचान की। पहले तो ऐसा लगा कि स्विस पुरस्कार का दावा करेगा। 1952 में एक मजबूत स्विस टीम जिसमें प्रसिद्ध पर्वतारोही रेमंड लैम्बर्ट भी शामिल थे, उसने खड़ी लोत से फेस तक का रास्ता तय किया था और साउथ कॉलम तक पहुंचे थे। उस ऊंची चौड़ी काठी से लैम्बर्ट और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने फिर 28,210 फीट यानी 8,598 मीटर तक का पूरा रास्ता तय किया। वापस मुड़ने से पहले दक्षिण पूर्व रिज पर शायद इतनी ऊंचाई जितनी पृथ्वी पर कभी कोई खड़ा हुआ होगा। अब अंग्रेज अपने वसंत 1953 के आक्रमण में हर संभव लाभ लाने के लिए दृढ़ हो गए, जिसमें 38 वर्षीय तेंजिंग को अपने प्रमुख शेरपा या सरदार के रूप में नियुक्त करना भी शामिल था। पहले के ब्रिटिश अभियान हालांकि अपनी उपलब्धियों में प्रभावशाली थे, अक्सर शैली में आकर्षक रूप से अनौपचारिक थे। दूसरी ओर हंट का जटिल योजन आबद्ध हमला पूरी तरह से सफल था। पर्वतारोहण पंडित केन विल्सन कहते हैं, आप सबसे तेजी से वहां पहुंचते हैं, आपके पास एक सैन्य नेता है जो पूरी तरह से उस दर्शन के अनुरूप है और आप शौकिया तौर पर क्लब वाले तरीके से काम नहीं करते हैं। शुरू से ही 33 वर्षीय मधुमक्खी पालक एडमंड हिलरी, अभी तक सर एडमंड नहीं हुए थे, शिखर सम्मेलन में से एक के लिए प्रबल दावेदार थे। बैंड का कहना है केवल 2 वर्षों में यह उनका 4th हिमालयी अभियान था और वह फिटनेस के चरम पर थे। उनके मूल स्थान न्यूजीलैंड की भारी हिमाच्छादित चोटियां हिमालय के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल साबित हुई थी। हिलरी ने अभियान की शुरुआत में उस टीम का नेतृत्व करके सम्मान अर्जित किया जिसने खुम्बू हिमपात के माध्यम से एक मार्ग बनाया। विल्सन उसे बुलाते हैं आस्तीने चढ़ाने वाला, काम निपटाने वाला आदमी। फिर भी साजो सम्मान की गड़बड़ी, कई दिग्गजों की अनुकूलन में विफलता और कुछ प्रायोगिक ऑक्सीजन सेटों की समस्याओं ने अभियान को बुरी तरह से रोक दिया।
टीम को लोत्से फेस पर स्विस मार्ग पर वापस जाने में परेशानी भरे 12 दिन लगे। आंशिक रूप से शायद क्योंकि ब्रिटिश कठिन दाजो सम्मान की गड़बड़ी, कई दिग्गजों की अनुकूलन में विफलता और कुछ प्रायोगिक ऑक्सीजन सेटों की समस्याओं ने अभियान को बुरी तरह से रोक दिया। टीम को लोत्से फेस पर स्विस मार्ग पर वापस जाने में परेशानी भरी।

पहुंच पाएगी। अंततः 21 मई को अभियान को सफलता मिली। शिखर पर चढ़ने के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव क्षेत्र, यह काफी देर हो चुकी थी जो चिंताजनक थी, क्योंकि मॉनसून जिसकी भारी बर्फबारी चढ़ाई पर रोक लगाती थी 1 जून की शुरुआत में आ सकता था।

दोस्तों, समय दौड़ा चला जा रहा है। 8 बजने वाले हैं और मुझे आपसे यही विदा लेना होगा। अगले बुधवार फिर मुलाकात होगी शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। तब तक के लिए अलविदा, प्रणाम। बने रहें, हमारा अगला कार्यक्रम है लैटिनो अमेरिकन।